असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

एक मिनट, स्क्रॉल करना बंद, डांस करना शुरू. लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम माय लेटेस्ट कूली नंबर 1 ऑन टिप्स ऑफिशियल. गो चेक इट आउट नाउ. डू लाइक, कमेंट, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स.